0: Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
1: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhadrik. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
2: Humko haq हमारे पार्टी के बाल से ठाकरे ने दिया, जहाँ भी अन्याय हो।
1: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
2: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
1: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
2: प्रशिक्षण हम हमारे
1: नहीं मांगेंगे
2: सर।
3: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
4: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
5: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellows.

0: स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को माओरी नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्सन, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Minister, of course, giving a speech in New Zealand of Auckland, an important update right there as he's talked about India-New Zealand's relationship. Remember, an important visit by the Indian Prime Minister in 40 years. On that note, we're slipping into a very short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
2: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
3: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne hak diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
4: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस।
5: बाय नाउ सेल।
4: होल्ड होल्ड।
5: बाय
4: सेल इमीडिएटली।
0: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit. India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
6: These are kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
7: The eminent juries who are here, and that itself speaks for the commitment towards highlighting the advantage which India is having. What I am looking for in this is that we should be awarding companies and individuals

0: देश का टायर जेके टायर द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधु
1: सो मेनी अटैक्स
0: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स द फाइटर जेट कॉकपिट्स एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट डिफाइनिंग इंटरव्यूज

0: Aren't you concerned that it's been 4 years already? How long will the trial continue?
1: Actually, deliberately, day one से defense ने इस trial को delay किया है.
0: जी.
1: और जो भी schedule है exam का वो already करीब एक महीने पहले ही आ जाता है. और जब ये date already fix की गई थी, उस time पे इन्होंने कोई mentioning नहीं की कि accused का exam है. लेकिन जब वो date नजदीक आने वाली होती है, तो जानबूझ करके ये trial को delay करने के लिए कितना बार ऐसा हुआ कि कोर्ट को इन पर कॉस्ट इम्पोज करनी पड़ी, कितना बार ऐसा हुआ कि इनकी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्लोज करनी पड़ी, कोर्ट को डायरेक्शन दिया गया निल अपॉर्चुनिटी इनको करनी गई, उसके बावजूद भी ये डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं. ऑलमोस्ट 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धा की जो डेड बॉडी थी, जिसके उसने पीसेस करके आपटा पूनावाला जो एक्यूज है इस केस में, उसने चॉप करके फेंक दिया था, वो आज केस प्रॉपर्टी है इस केस के अंदर. फैमिली लास्ट रिचुअल्स नहीं कर पाई अपनी बेटी के, इस वजह से उनके फादर जो कंप्लेनेंट थे, बड़े भाई की तरह हमारे जो विकास बालकर जी, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई 2025 फेब में. लेकिन ना जुडिशरी, हमारे जो जज साहब हैं, मतलब मैं उनको एलिगेशन नहीं लगा रही हूं उनके ऊपर, लेकिन इतनी अपॉर्चुनिटी एक्यूज को क्यों दी जाती है, इतना डिफेंस के लिए हमारा पूरा सिस्टम लिबरल क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. स्टार्टिंग में एवरी वीक कम से कम 4 से 5 डेट होते थे, डे बाई डे हमारी हियरिंग्स होती थी, लेकिन लास्ट 1 ईयर से डेलिबरेटली हमारा मैटर डिले हो रहा है. और जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं, जो भी सबमिशन होते हैं, एक्यूज के उसको कंसीडर कर लेती है.
0: सीमा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप एनडीटीवी पर अभी बता रही हैं. आप कह रही हैं कि लगभग 5 साल हो चुके हैं, डेड बॉडी अभी भी एज केस एविडेंस है, लास्ट रिचुअल फैमिली नहीं कर पाई है, और दूसरी बड़ी बात कि ये पहली ऐसी घटना नहीं है, बार बार केस को डिले किया गया है, बार बार ऐसे बहाने बनाए गए हैं कि केस को किसी तरीके से डिले किया जाए. कुछ ऐसी घटनाएं क्या आप हमारे दर्शकों के साथ बताएंगी कि कैसे इसको डिले हुआ, और आखिर में कि क्या कोई लीगल रिकोर्स आप लेंगी इसमें?
1: आज आपके चैनल पे कोर्ट रूम की रियलिटी बताना चाहती हूँ. मेरे पास वो रिकॉर्डेड वीडियो है जिस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया कि ये वो एक्यूज है जिसको पूरे देश ने फांसी की डिमांड की, जिसके लिए कि इसको कड़ी से कड़े पनिशमेंट दिया जाए. तो कोर्ट की ये ड्यूटी होती है कि कोर्ट एटलीस्ट कोर्ट एक्यूज पर्सन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर वो उसको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये बैठेगा या खड़ा होगा. लेकिन हमारे पास वो मल्टीपल वीडियोज या कोर्ट में हमने प्रोटेस्ट भी किया, रिक्वेस्ट भी किया कि इस एक्यूज को आप एडवोकेट के इक्विवेलेंट बैठाल करके उसको सुना जाता है. इतना हमारे कोर्ट लीनियंट कैसे हो सकते हैं? उसके अलावा कोर्ट बार बार उनको अलाउ क्यों कर रही है? कोर्ट एक अमाइकस क्यूरी क्यों नहीं अपॉइंट कर रही है जिससे कि ये मैटर हमारा फास्ट प्रोसीडिंग हो सके? ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई अगर काउंसिल जिसके पास टाइम नहीं है सफिशेंट अपने केस में देने का, तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो हटा करके उनको रिमूव कर सकता है उस केस से, और फर्दर एक्यूज को डायरेक्शन दे सकता है कि अपना कोई आप नया काउंसिल लेकर के आइए. अदरवाइज कोर्ट इसमें अमाइकस क्यूरी अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि जस्टिस डिलेड एंड जस्टिस डिनाइड. 5 ईयर अगर हमारा ट्रायल में लग रहा है, अभी ये मैटर हाई कोर्ट देन सुप्रीम कोर्ट, अगर डेथ पेनल्टी हुआ तो ये मैटर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा. 7 ईयर निर्भया केस में लगा, श्रद्धा वाले में 15 साल लगने वाला है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
0: नहीं, बहुत सांत्वना हमें परिवार के साथ है, लेकिन हम एनडीटीवी पर आपको बताना चाहते हैं कि एनडीटीवी श्रद्धा के परिवार के साथ खड़ा है, सीमा कुशवाहा जी आपके साथ खड़ा है, और जब तक हो सके मीडिया के दायरे में हमें सवाल उठाने पड़े हम सवाल उठाएंगे, और न्याय के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे. ये मुहिम एनडीटीवी पर जारी रहेगी. सीमा कुशवाहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी. Viewers, it is a shocking case of Shraddha Wakar that continues. It's been 4 years, there is no justice. But the question really is that how this gruesome murder took place, shook the conscience of the country, and yet after 4 years, almost 5 years, there is no end to the trial, there is no justice and no light at the end of the tunnel. The gruesome fridge murder have taken place, and let's get you more details on this. The accused of killing live-in partner Shraddha Wakar strangled Shraddha after an argument, and Shraddha's body was dismembered. The stored body parts in a refrigerator shockingly, and then disposed of remains at multiple locations over several days. He was charged with murder and causing disappearance of evidence. Aftab has pleaded not guilty in this entire case.

नमस्ते। की ओरा न्यूजीलैंड। हम भारत के लोग सुनते आए थे 20 साल के बाद, लेकिन आज 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूं। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था।

इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। जैसे आपके प्यार को संभाल के रखता हूं, इस बार जब मेरा यहां आने का कार्यक्रम बना तो मैं विशेष तौर पर इसे अपने साथ लेकर के आया, क्योंकि खबर थी ठंड ज्यादा है। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। इस रिश्ते को न्यूजीलैंड की एक सुंदर परंपरा अच्छे से डिफाइन करती है। यहां सदियों से एक शब्द लोगों को जोड़ता आया है, वाका। वाका सिर्फ एक नाव का नाम नहीं है, वाका हमारी शेयर्ड जर्नी की प्रतीक है। और आज भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे, हम। साथियों, मुझे इस यात्रा की सफलता पर पूरा भरोसा है। जानते हैं क्यों?

मोदी नहीं, क्योंकि इसके असली नाविक आप सभी हैं। ऑकलैंड से वेलिंगटन तक, क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक, न्यूजीलैंड के कोने कोने में फैला भारतीय समुदाय इस शेयर्ड जर्नी का एक नाविक है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं अपने मित्र प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, न्यूजीलैंड सरकार के सभी साथियों और यहां लेबर पार्टी के मेंबर्स का भी मैं अभिनंदन करूंगा। ये दिखाता है कि भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को कितना बड़ा बाई पार्टीजन सपोर्ट है। इससे ये भी पता चलता है कि कीवी इंडियन कम्युनिटी की अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है। आप यहां आए, कीवी इंडियन कम्युनिटी के उत्सव का हिस्सा बने, इससे ये सेलिब्रेशन और वाइब्रेंट हो गया है। आपने जिस गर्मजोशी से, जिस स्नेह और उत्साह से आपने हम सभी का स्वागत किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। वैसे एक्सलेंसी, कीवी इंडियन कम्युनिटी में भी सुपर हिट है कि नहीं है? सुपर हिट है ना, आपने अभी दिखा दिया। भारत के इंडिपेंडेंस डे पर, स्वतंत्रता दिवस पर, आपने क्रिस हिपकिंस के साथ मिलकर दमादम मस्त कालंदर गाने पर जो डांस किया, वो काफी वायरल हुआ। आपके वो मुंह कीवी इंडियन के दिलों में छप गए हैं। साथियों, न्यूजीलैंड वाकई एक अद्भुत देश है। यहां पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, नेचर है, कल्चर है, और न्यूजीलैंड की असली ताकत यहां के स्थानीय लोग हैं। न्यूजीलैंड के लोगों ने दिखाया है कि कोई देश जब एक जुनून, एक जज्बे के साथ आगे बढ़ता है तो वो दुनिया को इंस्पायर करता है। यहां जो कीवी इंडियन कम्युनिटी है, आप सभी को भी न्यूजीलैंड के दिलदार लोगों ने बहुत प्रेम से अपनाया है। अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने आपके टैलेंट, आपके विजन पर ट्रस्ट किया है। और आज देखिए,
न्यूजीलैंड की इकोनॉमी हो, यहां की सोसाइटी हो, कीवी इंडियंस नए नए रंग भर रहे हैं। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर, एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं। जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं। जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, ईश सोढ़ी और एजाज पटेल जैसे टैलेंट को अवसर मिल सकता है। न्यूजीलैंड वो जगह है जहां की सड़कों में भी भारतीय शहरों को सम्मान दिया गया है। कहीं खंडाला है, वो सिनेमा वाला खंडाला नहीं, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, कलकत्ता स्ट्रीट है, दिल्ली क्रिसेंट, अमृतसर स्ट्रीट, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं। जैसे मुझे बताया गया है कि किसी भी विषय पर बात शुरू कीजिए, थोड़ी ही देर में बात मौसम पर पहुंच ही जाती है।

साथियों, मैं न्यूजीलैंड की लीडरशिप से भी जब भी मिला हूं, वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा आपकी होती है और माथा मेरा ऊंचा होता है।

साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है जो आज अपनी प्राचीनता को सहजते हुए आधुनिकता को स्वीकार कर रहा है। हर युग में, हर दौर में भारत ने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और इसका कारण है हमारी सीखने की ललक। भारत सबसे सीखता है। हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं, जन कल्याण की भावना मायने रखती है। और इसलिए हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। आज हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड की सोसाइटी में विमेन बहुत बड़े पैमाने में कंट्रीब्यूट कर रही है। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है। साथियों, रूरल इकोनॉमी कैसे किसी देश की तकदीर बदल सकती है, ये न्यूजीलैंड ने करके दिखाया है। न्यूजीलैंड की ताकत एग्रीकल्चर के इर्द गिर्द बनाया गया एक एफिशिएंट इकोसिस्टम है। ट्रेसेबिलिटी हो, फूड सेफ्टी हो, कंप्लायंस सिस्टम हो, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये भारत जैसे छोटे किसानों वाले बड़े एग्रीकल्चर नेशन के लिए बहुत बड़ी सीख है। न्यूजीलैंड ने जेस्प्री मॉडल से दिखाया है कि छोटे किसान भी बाजार के एक बड़े ब्रांड बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की क्लाइमेट स्मार्ट प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में भी हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। साथियों, यहां के मानुका हनी को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। जैसे यहां हनी ट्रेडिशन और टेस्ट के अलावा हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ा है, वैसे ही भारत के आयुर्वेद में भी हनी का बहुत बड़ा महत्व है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि भारत में भी हम बी कीपिंग को लेकर एक मिशन चला रहे हैं। इससे भारत में हनी प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है और आजकल तो हिमालय की ऊंचाइयों से जो हनी आता है वो गोल्ड का डायमंड बनता जा रहा है। मैं समझता हूं न्यूजीलैंड से हम हनी प्रोडक्शन और बढ़ाने के बारे में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, इस साल
इंडिया न्यूजीलैंड स्पोर्टिंग रिलेशंस को एक साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पहले, याद रखना और गर्व भी करना, 100 साल पहले हमारी हॉकी टीम न्यूजीलैंड खेलने आई थी और उस टूर में मेजर ध्यानचंद के शानदार परफॉर्मेंस की हर तरफ चर्चा हो रही थी। उनकी हॉकी ने न्यूजीलैंड के लोगों को भी, उनका भी दिल जीत लिया था। साथियों, कंटेंट क्रिएटर्स की भाषा में कहूं तो ये कॉलेब का जमाना है। न्यूजीलैंड और भारत स्पोर्ट्स में भी बहुत ही शानदार कॉलेब कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण रग्बी का है, मुझे अभी भी बताया गया है कि कुछ देर पहले ही ऑल ब्लैक्स ने रग्बी के मैच में शानदार जीत दर्ज की है। भारत रग्बी में न्यूजीलैंड से सीखना चाहता है। भारत भी रग्बी में आगे आए, इसके लिए हमें कोच चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए। इसमें न्यूजीलैंड हमारी बहुत मदद कर सकता है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम को मैं एक अच्छी शुरुआत मानता हूं। साथियों, आज यहां आने से पहले मैं यहां न्यूजीलैंड के एक स्पोर्ट्स स्टार्टअप इवेंट में गया था। स्पोर्ट्स टेक में हो रहे इनोवेशंस ने, नए आइडियाज ने वाकई मुझे प्रभावित किया। मुझे विश्वास है कि हम स्पोर्ट्स टेक में साथ मिलकर काफी कुछ कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड का फ्यूचर आपस में जुड़ा हुआ है। इसका एक उदाहरण स्पेस सेक्टर भी है। भारत का चंद्रयान जब मून के साउथ

पुल पर लैंड किया। पूरा न्यूजीलैंड नाच रहा था उस दिन, और उस दिन हम सबको गर्व हुआ। अब आपको मैं गर्व की एक और बात बताता हूं। आपको गर्व दिलाने में, इस सक्सेस में न्यूजीलैंड की टेक्नोलॉजी का भी योगदान रहा है, न्यूजीलैंड की स्पेस कंपनी ने कई अवसरों पर हमारे साथ मिलकर काम किया है। हम इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, स्पेस सेक्टर ये बताने के लिए काफी है कि भारत और न्यूजीलैंड की इकोनॉमी एक दूसरे को कितना कुछ दे सकती है। यही हमारे ट्रेड एग्रीमेंट की भी स्पिरिट है। ये ट्रेड एग्रीमेंट विकसित भारत की तरफ हमारी यात्रा को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड दोनों के बिजनेस को नए अवसर देगा। साथियों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक और बहुत बड़ी समानता है। ये समानता हमारे इंडिजिनस कल्चर की है। इंडिजिनस कल्चर को सेलिब्रेट करने, उसको संरक्षण देने की है। और आज मैं माओरी समाज को विशेष रूप से याद करना चाहता हूं। मैंने हाका को केवल एक परफॉर्मेंस के रूप में ही नहीं देखा, मैंने हाका में एक समाज की आत्मा देखी है। उसमें साहस है, आत्मसम्मान है, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा है, और पूरे समुदाय की सामूहिक शक्ति का एक एहसास है। साथियों, माओरी संस्कृति में एक बहुत सुंदर शब्द है, मना कितांगा। मना कितांगा, इसका मतलब है सम्मान देना, अपनापन देना, और पूरे मन से उसकी देखभाल करना। भारत में भी हम कहते हैं अतिथि देवो भव। शब्द अलग है, परिवेश अलग है, पहनाव अलग है, भाषाएं अलग है, लेकिन भावना बिल्कुल एक ही है। ऐसे ही माओरी संस्कृति में परिवार के लिए एक सुंदर शब्द है, फानो, यानी परिवार। इसमें कई पीढ़ियां होती हैं, रिश्ते होते हैं, पूरा समुदाय होता है। भारत भी परिवार को केवल एक सामाजिक व्यवस्था नहीं मानता। हमारे लिए फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है। साथियों, माओरी परंपरा का एक और सुंदर विचार है, काइत्याक कितांगा। काइत्या कितांगा, यह हमें सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं है, हम उसके संरक्षक है। भारत में भी कहा गया है, माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वीया। पृथ्वी हमारी माता है। इसी सोच को आधार बनाते हुए हम भारत में

धरती मां के संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम, प्राकृतिक खेती मिशन जैसे अनेकों अभियान चला रहे हैं। साथियों, मैं जानता हूं हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी आपके दिल में के किसी न किसी कोने में दिन भर की प्रक्रिया में कहीं न कहीं हिंदुस्तान झलकता ही रहता है, हिंदुस्तान बसता ही है। सही है कि नहीं है? शरीर यहां होगा, मन और इसलिए आप भारत की हर उपलब्धि पर भी नजर रखते हैं और जब क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर के देखते हैं तो बहुत सी चीजें देखने की छूट जाती हैं, लेकिन घर में टीवी पर बैठकर के जब देखते हैं तो हर बारीकी का पता चलता है। वैसा ही आपको भी भारत की हर बारीकी का पता चलता है। और यही बात हमें सबसे खास बनाती है। भारतीय देश से बाहर जिस देश में रहते हैं वहां उस देश की प्रगति की मैं पूरी तरह मदद करते हैं और अपने देश की विकास की भी जानकारी रखते हैं। साथियों, हम जितना प्यार जन्मभूमि को करते हैं उतना ही समर्पण कर्म भूमि को भी करते हैं। साथियों, वैश्विक चुनौतियों के बीच आज भारत जिस तेजी से विकास कर रहा है वो अभूतपूर्व है। मैं आपके सामने देश की उपलब्धियों का, भारत के सामर्थ्य का एक गुलदस्ता प्रस्तुत करूंगा। ये गुलदस्ता मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और मैं पक्का मानता हूं इस गुलदस्ते में आपकी पसंद का कोई न कोई फूल जरूर होगा जो आपको सुंदर भी लगेगा और गर्व से भर भी देगा। तो आप तैयार हैं? गुलदस्ता पेश करूं? अब आपको ढूंढना है आपका फूल कहां है उसमें। या तो सारे के सारे फूल आपके हैं। साथियों, भारत आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। भारत मोबाइल डेटा कंजम्पशन में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर है। साथियों, इतना ही नहीं, आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। भारत बहुत जल्द दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने जा रहा है। सोलर एनर्जी कैपेसिटी में भी भारत दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो चुका है। साथियों, आज का भारत दुनिया को विकास के नए मॉडल भी दे रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में यूपीआई के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और स्पेस इकोनॉमी में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, ये उस नए भारत की तस्वीर है जो दिखाती है कि कैसे भारत न्यूजीलैंड की तरह की इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। साथियों, भारत की इस ग्रोथ का एक और पहलू भी है। ये पहलू हमारी विरासत है, हमारी हेरिटेज है। भारत जितना महत्व अपनी इकोनॉमी और इकोलॉजी को देता है, उतना ही फोकस अपनी हेरिटेज पर भी करता है। साथियों, भारत कैसे काम करता है, इसका एक उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र स्वरूप है। जब अफगानिस्तान में संकट आया तो हम गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को पूरे मान के साथ भारत लेकर आए। साथियों, हमारे महान सिख गुरुओं ने पूरी मानवता को सेवा, साहस, समानता और करुणा का संदेश दिया है। दुनिया के हर हिस्से में गुरुद्वारे सेवा के सेंटर है। कोई भूखा आए उसे भोजन मिलता है, कोई संकट में है उसे सहारा मिलता है। इसी माहौल में सिख कम्युनिटी के कुछ भाइयों और बहनों ने हमें बताया था कि श्री हरमंदिर साहब में सेवा के लिए एफसीआरए से जुड़ी कुछ परेशानियां आ रही है। हमने उस समस्या का तुरंत समाधान किया। साथियों, आप सभी श्री हेमकुंड साहब जी के बारे में भी जानते हैं।

हिमालय की ऊंचाइयों पर है, साल का लंबा समय बर्फ की चोटियों से घिरा रहता है, वहां अगर कोई दर्शन करने के लिए जाना चाहे तो बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कम लोग जा पाते हैं, खास करके हमारे सिख भाई बहन वहां यात्रा के लिए जाते हैं, वहां दर्शन के लिए जाने में खास करके हमारे बुजुर्गों को, हमारे सिख भाई बहनों को सहूलियत हो, इसलिए सरकार हेमकुंड साहब तक रोपवे भी बनवा रही है। साथियों, हमारी ही सरकार ने साहिब जादों के शौर्य और बलिदान की अमर स्मृति में 26 दिसंबर को, प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया है। आज यह दिवस पूरे देश के लिए प्रेरणा का पर्व बन चुका है। आज केरलम से लेकर असम तक बच्चा बच्चा भी चारों साहिबजादों और माता गुजरी के बलिदान के बारे में जानने लगा है। वीर बाल दिवस ने भारत के अनगिनत बच्चों के मन में, युवाओं के हृदय में अटूट साहस का संचार किया है। साथियों, मैं आपसे पवित्र जोड़े साहब की भी बात आज करना चाहता हूं। मेरी सरकार में मेरे एक साथी हैं, श्रीमान हरदीप पुरी जी। पुरी परिवार के पूर्वज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के सेवादार थे। हरदीप पुरी जी ने मुझे यह बताया था कि उनके परिवार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोड़े साहब 300 साल से संजो के रखे हैं। बंटवारे के समय पुरी साहब के परिवार ने, उनके पूर्वजों ने उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आए। पवित्र जोड़े साहब को, उनका परिवार सिख संगत को सौंपना चाहता था, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके दर्शन कर सके। फिर हमने एक समिति बनाई जो सिख परंपराओं को जानते हैं, जानकारों की हमने एडवाइस ली और हमने निर्णय लिया कि इन पवित्र जोड़े साहब को वहां ले जाया जाए जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पहली बार पावन भूमि पर आए, जहां उनका जन्म हुआ, यानी हमारे श्री पटना साहिब। मुझे बहुत खुशी है कि अब ये पवित्र जोड़े साहब पटना साहिब की पावन भूमि पर है और ये मेरा सौभाग्य है कि उस पवित्र अवसर का मुझे साक्षी बनने का, वहां मौजूद रहने का सौभाग्य मिला था। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी भारत जाएं, पटना साहिब में उनके दर्शन जरूर करें। साथियों, आज मैं यहां से बहुत सारा विश्वास, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी स्मृतियां लेकर जा रहा हूं, और मैं आपसे ये भी कहूंगा, इस बार भारतीय पीएम को न्यूजीलैंड आने में 40 साल लगे हैं, लेकिन अब इतना लंबा इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा।
अब 40 साल नहीं लगेंगे, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मैं आज आपसे एक आग्रह भी करना चाहता हूं,

समझे और भारत की विविधता की बात दुनिया तक पहुंचे, इसके लिए हमने भारत को जानो क्विज इसकी शुरुआत की है। अभी इसका कर्टन रेजर ही हुआ है और हमारे साथियों ने इसमें ही जिस एनर्जी से पार्टिसिपेट किया है, मैं वही देखकर बहुत प्रभावित हूं। अब हम इस इवेंट के 6th एडिशन को और हाईटेक बना रहे हैं। बहुत सारे इवेंट्स इस बार ऐप के माध्यम से होने वाले हैं। मेरा आग्रह है, यहां जितने भी युवा साथी हैं वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारत को जाने और भारत की विरासत को न्यूजीलैंड के लोगों के साथ जोड़े। साथियों, मैं एक शानदार फ्यूचर सामने देख रहा हूं। जिसमें विकसित भारत की रोशनी भी है और न्यूजीलैंड की प्रॉस्पेरिटी भी है। इसी विश्वास के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम मिनिस्टर लक्षण और उनकी टीम का आभार, न्यूजीलैंड की जनता का धन्यवाद। एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। थैंक यू की ओर।

0: for rising actually.
1: Did you ever get a chance to hear Modi ji in India?
0: No, this is the first time I'm seeing him. Yeah, we are blessed actually.
1: All great, thank you so much. I know you have long way to go. So ये हमारे लोगों का उत्साह उमंग आपको देखने को मिल रहा है जब आपने हमारे कुछ वीडियोस देखे बाहर जिस तादाद में लोग थे अंदर हम गए और कैसे यहाँ पे लोग बैठे रहे इतने अच्छी स्पीचेस यहाँ पे हमने सुनी लोगों की तो ये गर्व की बात है हमारे लोगों के लिए बिकॉज यहाँ पे मोदी जी ने एक बात जरूर कही है कि 40 साल लगे हैं किसी भी प्रधानमंत्री को आने के लिए अब दोबारा 40 साल नहीं लगेंगे तो ये उम्मीद है कि हमारे जो भारतीय मूल के लोग हैं ये मोदी जी को बार बार देखें शायद आई नो कि इनका कैलेंडर बिजी रहेगा 4-5 साल तक नहीं देख पाएंगे और ऑफकोर्स भारतीय क्रिकेट टीम का यहाँ पे आगमन

0: संगम की होने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि जब FTA होगा तो दोनों ही देशों की प्रोग्रेस होगी। कुछ स्किल्स हम में है जो हम देंगे, कुछ स्किल्स उनके हैं जो हम में आएंगे। तो दो परिवारों का मिलन हो रहा है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मोदी जी का आना आई थिंक इतिहास का एक ऐसा पल हुआ है आज शाम को, ये जो पलों पलों जिंदगी भर हमको याद रहेगा। एंड आई थिंक इट वॉज एन हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
1: Yeah, indeed, and thank you so much. जितने भी लोगों ने सहयोग दिया, I mean, look at the performances.
0: Yes.
1: के भारत के actually अगर आपने वो वीडियो देखी होगी, कई सभी स्टेज के एक एक परफॉर्मेंस को देखने को जो मौका मिला है, और ये जो तैयारी की गई है ये भव्य रूप से की गई, और ये जो अरीना है हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा अरीना है। यहाँ पर अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, आने वाले दिनों में सोनू निगम भी कॉन्सर्ट करने वाले हैं, तो इतनी तादाद में नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए जो लोग आए थे, मिलने के लिए आए थे, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू टू एनडीटीवी कि आपने न्यूजीलैंड के लोगों के लिए जानकारी पहुंचाई है, हमारा ये संदेश औरों तक पहुंचा है, और हम कभी भी आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। हमारे
2: हेवन जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने FTA का जिक्र किया, तो FTA के बारे में थोड़ा अगर आप बताएं कि न्यूजीलैंड को भी, न्यूजीलैंड के बिजनेसेस को भी कितना एक महत्वपूर्ण योगदान उनका रहेगा, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ी कंट्री है, एक बहुत बड़ा स्केल मैन्युफैक्चरिंग वहां पर है, तो FTA को लेकर जब वो इंप्लीमेंट होगा, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो कि कुछ ही महीनों में हमने देखा इस पर नेगोशिएशंस हुए, तो FTA को लेकर कितनी उत्सुकता है?
1: देखो, FTA की वजह से ऐसे काफी सारी दो राय हो सकती है, हर एक मुल्क की अलग राय हो सकती है। मैं मेरे साथ एक यहाँ पे हमारे भारतीय मुल्क के ही व्यक्ति है जिनसे मैं कुछ पूछना चाहूंगा, लेकिन जैसे कि एक दलील होती है कि ये सही है या नहीं है, यहाँ के लिहाज के लोगों से कुछ नाराजगी है कि शायद इससे बहुत सारे भारतीय यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे अभी हाल ही में जो भारतीय लोगों का योगदान है इसको लोग देख रहे हैं। सुजय जी, NDTV के प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि FTA से क्या लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है न्यूजीलैंड या भारत, तो आपके लिहाज से एज ए जस्ट कम्युनिटी पर्सन, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू हैव टू से टू दैट?
3: 110% इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, ये हम देख पा रहे हैं। मेबी जैसे कि सेफल एक्सपोर्ट्स या एप्पल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड जो कि पहले 7 स्थान पे थे, दे हैव क्लाइम टू द 4th, मतलब वैसे ही अराउंड 67% की ग्रोथ हुई है इन एप्पल्स। अब आप कीवी फ्रूट लीजिए, ऐसे कोल लीजिए, बहुत सी चीजें हैं जो कि न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमको मिलता है 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट, कहां मिल सकता है? सो सर्टेनली इट्स अ गेम चेंजर, इट्स अ विनर।
2: All right, thank you very much to Hemant Parekh and your guest on this big development that is coming in, Prime Minister Narendra Modi in New Zealand, the first Indian Prime Minister after 40 years, and an iconic speech at that venue along with the Prime Minister, Hemant Parekh and Gaurav Sharma and Rishabh. Thank you very much for joining us.

0: And there is breaking news coming in on the top of this bulletin. UCC Bill Review Panel formed in West Bengal. 9-member committee formed to examine draft Uniform Civil Code West Bengal 2026 bill. The committee has been tasked with reviewing provisions of the proposed bill. Recommendations to be submitted after detailed examination. Draft aims to assess implementation of a common civil law framework in the state. It's a big development. Certainly, viewers, we have been bringing you developments on this front in West Bengal. Several measures that BJP had announced in the past, commitments that were made to the people of West Bengal, now in fact going and in fact being examined, and this framework has been also issued. And let's listen into the reaction that we are picking up.
1: Our Supreme Court ka retired justice Ranjana Desai ka committee ho gaya hai. कमेटी काम शुरू करेगा, आज तुरंत आ जाएगा। दूसरा प्रदेश में यूसीसी लागू हो गया है, ये एक ही देश है, एक ही कानून रहेगा, दो कानून नहीं रहेगा, मान के चलिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है।
0: एंड दिस इज अ बिग डेवलपमेंट कमिंग एट दिस आवर। वी हैव इन फैक्ट श्रेयसी जॉइनिंग अस ऑन दिस बिग स्टोरी। श्रेयसी, what's the latest that you are picking up? This was something that was expected by the BJP. What are the timelines that you are looking at, and any opposition right now?
2: Well, what we have given to understand, the opposition has not yet got the draft bill to examine themselves and see what the state government has proposed in that Uniform Civil Code Bill 2026, which is yet to be tabled in the Vidhan Sabha. But the BJP government here in West Bengal have made their intentions very clear and set a deadline of August 31st to implement UCC across the state. And that's why the draft bill is being reviewed by a committee formed by the West Bengal government under retired Supreme Court Judge Ranjana Desai. And she is the one who has also been the one who has also framed the UCC in Uttarakhand and is also in the Maharashtra government panel, which is also going to be implementing UCC very soon. But of course, West Bengal government here taking a step forward and forming that committee to review the draft bill before it becomes a law here in the state of West Bengal.
0: All right, Tracy, getting us the latest detail on this big development from West Bengal. The government has formed a panel, a 9-member committee that will go through the provisions of the UCC, and we could possibly see the implementation in the next few months. And breaking news coming in, rift widens in Punjab Congress. No end to Channi Waring showdown. Channi meets Bhupesh Baghel amid this latest row. Will decide next course of action. That's what Channi is saying. He's saying after the meeting, there will be a decision that will be taken. Meanwhile, Congress MP Randhawa targets Punjab chief of the Congress party, Waring. And in fact, Randhawa is saying he must realize who is upset. So there is rift that is widening on this development. Let's listen into the reactions that we are picking up.
3: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
4: वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी।
0: Alright, a new show of strength by Charanjit Singh Channi, the rift widening within the Congress ahead of the elections in Punjab. According to sources, a demand was raised to remove Raja Waring from the post of Punjab Congress State President in charge. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present, and leader of the opposition Bajwa joined alongside MP Randhawa. Raja Waring was kept away from this meeting. Baghel departed from Chandigarh after a 6-day visit. Based on Baghel's report, the Congress High Command will decide how to deal with the rebellious stance of the Channi faction. All is not well within the Punjab Congress committee in Punjab, and certainly there are new developments that are coming in. Janendra Kumar is joining us on this latest development. Janendra, kya jankari mil rahi hai? Election se pehle jo talmel bithana chahiye Congress mein Punjab mein, क्योंकि पहले तो उनको बहुत सपोर्ट वहां पर है लोगों का, हो सकता है कि कांग्रेस की सरकार आ भी जाए, लेकिन इलेक्शन से पहले ही एक रिफ्ट नजर आ रही है।
5: बिल्कुल, और रिफ्ट तो है ही, और ये जो रिफ्ट है ये बढ़ता ही जा रहा है आदित्य। 1 जुलाई को लंबे काफी राउंड ऑफ डिस्कशंस के बाद 1 जुलाई को कांग्रेस लीडरशिप ने ये अनाउंस किया कि राजा वडिंग कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट, पंजाब कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बने रहेंगे, और इससे, इस डिसीजन से चन्नी और उनका जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सब काफी नाराज हो गए, और इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए, इसको सुलझाने के लिए भूपेश बघेल जो इंचार्ज हैं वो सोमवार को चंडीगढ़ पहुंचे थे, और उन्होंने बीते 5 दिनों में कई नेताओं से स्टेट ऑफिस में, कांग्रेस ऑफिस में मुलाकात की, कई नेताओं के वो घर गए, लेकिन चन्नी ग्रुप ने एक किस्म से उनका बायकॉट किया हुआ था, इससे मैसेज खराब जा रहा था, और यही वजह है कि चंडीगढ़ से निकलने से पहले एक मीटिंग प्लान हुई। राणा गुरजीत जो एमएलए हैं कांग्रेस के, चन्नी ग्रुप के हैं, उनके घर पर ये मीटिंग हुई जिसमें कि चन्नी मौजूद थे, रंधावा मौजूद थे, बाजवा मौजूद थे, और जैसा आपने बताया दर्शकों को 12 MLA मौजूद थे, 12 MLA, और 82 कैंडिडेट्स जो पिछले इलेक्शन में कांग्रेस के चुनाव टिकट पर चुनाव लड़े, तो ये सब लोग वहां पर मौजूद रहे, और सबने एक जुट होकर के डिमांड किया भूपेश बघेल से कि राजा वडिंग को स्टेट प्रेसिडेंट पोस्ट से हटाया जाए। भूपेश बघेल ने उन सबको एश्योर किया कि मैं ये बात पार्टी लीडरशिप तक पहुंचाऊंगा, और अब इंतजार ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी लीडरशिप जो है भूपेश बघेल की रिपोर्ट पर क्या एक्शन लेती है, क्या राजा वडिंग को लेकर के डिसीजन जो है रिव्यू किया जाता है, और अगर नहीं किया जाता तो चन्नी को कैसे मनाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।
0: जैनेन्द्र, आप हमें जानकारी दे रहे हैं, इस खबर पर नजर बनाए रखें। दैट्स द लेटेस्ट दैट वी आर पिकिंग अप फ्रॉम पंजाब। ऑल इज नॉट वेल विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड चन्नी इज स्टिकिंग टू हिज डिमांड्स। स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल गेट यू मोर न्यूज एंड अपडेट्स ऑन द अदर साइड।

परेशान हूँ। या जुटानी है जी, या भी पाड़ती है, मैं भी पाड़ती हूँ, सभी पाड़ते हैं। अब बच्चे को परेशान, चार पांच दिन काम पे गए, दो महीने हो गया, अभी 8 तारीख।

0: laws and a healthcare system they say failed them. Officials insist only 3 of the 5 deaths were linked by similar complications leading up to the renal failure stage, part of the same cluster. But the tragedy did not end there. Several other women suffered similar complications. They survived, but many are still undergoing repeated dialysis instead of caring for their newborns. No one seems to have a clear answer yet.
1: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पर लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
2: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे? मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे?
3: हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई इसको कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी, इसमें कौन है इसका जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी हमारा इंसान गए तो उसको दोषी तो मर्डर है। मेरा मेरे दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा
4: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
5: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी। शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही
4: किडनी का।
5: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम। तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ। हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है।
4: कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है?
5: मैम 24-25 तो हो ही होंगे।
0: Sources have alleged that there were issues with monitoring the urine output of the new mothers after delivery, a critical parameter that they stated was not tracked adequately in some cases at the Kota Medical College Hospital. It was flagged that there was poor tracking of blood pressure levels, ECG functions, hydration, liver and kidney function tests. Recommendations have also been made for better infection control mechanisms. The emergency operation theatre, where 6 of the deliveries took place, has now been shut and is being renovated. The labour room had a seepage. However, officials say bacteriological cultures from the OT showed no signs of contamination. In the aftermath of the Kota maternal deaths, drug controller officials also found that some oxytocin vials contained water instead of the drug. However, NDTV has come to know that doctors and investigators now believe oxytocin is unlikely to have directly been the cause of these deaths. Attention has shifted to other possible factors for the deaths. Sources say reports on surgical items, IV sets and IV cannulas are still awaited, while tests on samples of the used antibiotics and several other medicines have come clear. Fresh samples of medicines linked to patients developing such symptoms as shivering have also been sent for analysis. Some findings have already been submitted to the Health Ministry, but sources say investigators increasingly believe the tragedy may have been multifactorial, involving a combination of patient condition, medical consumables, environmental factors,

0: as well as a variety of other factors. As the probe continues, there is still no clear answer. Two doctors, including one contractual doctor, have been suspended.
1: उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल ही है नहीं नहीं कुछ भी इशू नहीं था मेरा तो
2: डॉक्टर ने क्या बोला कैसे ये
1: वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं
2: बताया नहीं है
1: नहीं बताया नहीं है हमें नहीं बताया था
3: हाँ बीपी कम ज़्यादा हो जाती है बीपी बढ़ जाती है कभी कभी कम हो जाती है फिर शुगर बढ़ जाता है दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है अस्पताल में रहता हूँ 2 महीने बच्चा बच्ची सारे यहीं है और 50,000 रुपये खर्च हो गए मेरे पास पैसे भी नहीं रहे अब तो कहाँ तक खर्च करेंगे बच्चा बच्ची के लिए और बच्ची की तबीयत खराब हो गई आज जो देखो मेरा तो उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा अब क्या करूँ उस बच्ची को
4: और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी मैं कहा आपको मैं पार्टी दूंगी मेरे बेबी बॉय हुआ है ना ये तक बोल के आई थी बट आते ही फिर थोड़ी देर सोई है ना फिर उसके बाद मेरी यूरिन आना बंद हो गया उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा तो उसके बाद यूरिन आना बंद हुआ फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई
0: Sources said the new Kota Medical College Hospital handles nearly 100 deliveries a day. With such a heavy workload, they claim urine output, which ideally should be monitored every 2 hours, may not have been tracked consistently in every case.
5: Renal failure, there are more than 1,000 etiologies in renal failure. In these patients, the main reason for renal failure is hypotension, decrease in the blood pressure. 4 committees has examined and all the committees, they have clearly stated that everything was normally monitored.
0: Senior doctors say many of the women they treat have had multiple pregnancies, are anemic, or arrive severely dehydrated. They say underlying health conditions coupled with poor nutrition and socioeconomic factors can increase the risk of serious complications during and after childbirth.
6: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो जोधपुर हो नागौर हो इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है उसको पहले से ही बीपी है प्रेग्नेंट है ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई ऑपरेशन हुआ तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है तो यह एक इर्रिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं
0: फॉर फैमिलीज इन कोटा द वेट फॉर आंसर्स हैज बिकम एज पेनफुल एज द ट्रेजेडी इटसेल्फ दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड फॉर द ट्रूथ बिहाइंड द इवेंट्स दैट चेंज देयर लाइव्स फॉरएवर लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स फ्रॉम द रूरल कॉर्नर्स ऑफ इंडिया They went to government hospitals in larger cities in search of safe and affordable institutional deliveries. Instead, that search ended in inconsolable loss.
7: In Rajasthan, every 1 lakh deliveries that take place, 1 lakh deliveries, be it cesarean, be it natural delivery, the death rate is less than 48 per 1 lakh. And in JK Lawn, there are 6,000 deliveries every year. The mortality rates in these deliveries is to the tune of 0.001%. One of the common factors we found is the heat wave, the heat. You say, how do you mean, how does it correlate with heat? Because dehydration takes place.
0: Bikaner, 6 mothers and stories of loss. Senior doctors at the PBM hospital in Bikaner insist that the 6 women do not represent a single cluster with a common cause. One of them was 6 months pregnant and had a history of hypertension. Another had diabetes. They say each patient had a different clinical history. It is claimed that they were mostly referral cases

0: and there were pre-existing risk factors that ranged from severe pregnancy-induced hypertension and postpartum hemorrhage to diabetes and kidney disease. According to these doctors, acute kidney injury is a known complication that can arise from multiple conditions, and that the blood cultures of all the patients had come negative. The PBM Hospital's internal committee has concluded that no common denominator has emerged. Instead, doctors believe the complications may have been multifactorial, involving a combination of underlying illnesses like diabetes, severe anemia, dehydration and poor nutrition, as well as environmental factors such as extreme heat. Investigators say a final conclusion can only be drawn once all the pending reports are received.
1: मैं भर्ती करा दी जद के बच्चों तो होना लो जद मैं को ठीक रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी अर्पेश नहीं हो जद बाबू यो जद मैं सब खुश हुआ बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे डिलीवरी हूँ 2-3 घंटे बाद
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली
1: हाँ बच्चे मिली माओ मिली के पापा ने बोलो जन मैं पापा ने फोन करी मैं कहो ज़्यादा दिक्कत होगी जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है जब मैं क्यों एक दम रही है खाई हो
2: नॉर्मल डिलीवरी थी
3: नॉर्मल
2: डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल था
3: हाँ
2: फिर आपको कहाँ लेके गए
3: प्रेसिडेंट रूम में
2: वहाँ पे क्या हुआ
3: वहाँ पता नहीं बेहोश करते था पता नहीं चला
4: हुआ 7 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल थी कोई दिक्कत नहीं थी डिलीवरी होने के बाद में भी फिर हमें बोला गया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इनको ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद में वहाँ से लेके आए बाहर निकाले फिर बोले वहाँ लेके जाओ ये फाइल लेके जाओ आप वहाँ डॉक्टर से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाके दिखा के वो फाइल दिखा के आए हम वहाँ पे तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि भी पहले तो वार्ड का बोला मैं वार्ड में लेके जाएंगे उन्होंने बोला नहीं हम सीधा आईसीयू में लेके जाएंगे इनको
5: क्या ऑपरेशन होगा दिल में आथन मिस्टेक बन गई उल्टे सर रहा था उल्टे सदर बचपन काट ऊपर लगाड़ ऊपर लगाड़ पूरे दिन उल्टे हुए रात रहा 10 बजे ले गए वो ट्रैक्टर में सेटर डायलिसिस कराए रात 2 बजे पाछा ले
6: गणित कौन है शुगर थे
2: शुगर है अच्छा और ये बस जब वो पेट से है होती है तभी शुगर है कि ऐसे भी शुगर है
6: शुगर है थोड़ी बहुत
2: थोड़ी बहुत शुगर है
6: फिर तबीयत डिलीवरी हुई बाद हुई पहले सही है डिलीवरी हुई ऑपरेशन डिलीवरी हुई सही 8 तारीख डिलीवरी हुई 21 तारीख बाद में खराब गलत
7: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या अभी 26 दिन हो गए
8: द पेशेंट्स हु डाइड दे वर पेशेंट्स हुज फाइल रिपोर्ट्स यू सी वर कोमॉर्बिड यू नो लाइक इन जोधपुर जॉन्डिस हाई डायबिटीज हाई ब्लड शुगर आई मीन योर हाइपरटेंशन एम्स टीम केम दे डिड अ फुल इंस्पेक्शन एंड दे डिड टेल अस दैट यू हैव टू tighten your SOPs. In Bikaner, one lady had gone to Nagaur. Then she got into complications and she got onto ventilator. From ventilator, she came down to Bikaner. She was even more sick. And so, again in Bikaner, she was put onto ventilator. So, all these ladies who came there were already in a critical state. They never came as normal deliveries.
0: For many in Rajasthan, including senior doctors, the events unfolding today bring back memories of 2011, when contaminated IV fluids at a government hospital in Jodhpur claimed the lives of 18 women. That tragedy exposed deep cracks in the public healthcare system and prompted promises of reform. 15 years later, another series of unexplained maternal complications is under investigation. Sources say investigators are also examining the IV fluids administered to these women, though the reports are still awaited. Whether history is repeating itself remains unclear. Until those answers come, one question continues to haunt Rajasthan.

0: Lessons of 2011 ever truly learned?
1: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
2: अच्छा,
1: यूरिन नहीं आ रहा था।
2: अच्छा,
1: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी निकल गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी जिससे हो रहा है।
3: यहाँ आने के बाद इलाज अच्छा हुआ तो अब मेरा थोड़ा उम्मीद जागी है। बहुत परेशानी हुई हमको और हर चीज़ के लिए हमें अब वहाँ पे बहुत वेटिंग करना पड़ता था रिपोर्ट के जरिए, और हो सके तो दूसरे दिन मिलती शाम को भी। बहुत परेशानियाँ थी, हाँ बच्चा भी है उनका भी बहुत परेशानी का है, अभी कौन उनकी देख रहे, माँ तो यहाँ पे है उनकी।
4: MDM मेडिकल ICU में रेफर करा दिया गया, और जो बाकी 6 पेशेंट हमारे यहाँ थे उनको एहतियात तौर पे, प्रिकॉशनरी तौर पे हायर एंटीबायोटिक्स पे ले लिया गया। 20 जून को जो ये सैंपल्स लिए थे OT के, गायनी OT के, वो सभी नॉर्मल हैं, और पेशेंट्स के भी 20 जून को सैंपल ले लिए गए थे। उसी दिन प्रॉम्प्टली सभी पेशेंट्स के वेजाइनल स्वैब, उनका ब्लड कल्चर के लिए ब्लड लिया था, यूरिन लिया था, वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं।
5: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था। बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
2: 2 घंटे बाद तबीयत खराब हुई,
6: 2 घंटे बाद क्या होने लगी,
2: ब्लीडिंग हो गई थी। दूसरे दिन फिर सांस की तकलीफ हो गई थी, ऑक्सीजन लगाया था,
6: ब्लड चढ़ा था।
2: रात को उसी दिन
7: वो ऑपरेशन किया था, उसके बाद तो सही बता रहे थे, फिर अचानक से वार्ड में पता नहीं क्या हुआ उनको। तो नॉर्मल कुछ हुआ था, BP डाउन हो गई थी वगैरह, और बाकी वाले को है जो किसी के ब्लीडिंग हो रही थी, फिर एक के होने शुरू हुए, दूसरे के होगी, दूसरे के तीसरे के होगी।
8: टू नो वॉट कैन बी द पॉसिबल और एग्जैक्ट कॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हैपनिंग्स इन दीज patients who has been clustered on that particular day, it is a little premature to say, because we have taken the samples of most of these drugs and surgical items and we have sent it for the evaluation. Usi cheez ko humko investigate karna hai ki is tarah ke happenings mein humko ye lagta hai ki koi cheez aisi cheez gayi hai jisko बहुत प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में गई है, जिससे हमको तो उसको टेस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास में जब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो उसको हम नहीं कह सकते, पर हमें इन चीज़ों का जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमें सस्पिशन रहता है।
9: कैन सी द मेडिकल रिकॉर्ड एंड द मेडिकल रिकॉर्ड इज ओनली हैंडेड ओवर वंस यू डिस्चार्ज, सो व्हेन द डिस्चार्ज होपफुली गॉड विलिंग दे विल बी डिस्चार्ज, दे आर रिकवरिंग ऑलराइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी गिवन। But if they want to access the medical record, there's nothing hidden about it. There's no secret about it, about the medical record. They can be shown immediately. AIIMS team came, they did a full inspection, and they did tell us that you have to tighten your SOPs. They have told us certain SOP measures, which Pan Rajasthan, we are putting SOPs to improve. You know, the government is giving everything free. We are spending so many thousands of rupees each day, you know, trying to give them the best care and try to make them recovery. The government is doing their best for them.
10: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: वी आर ओवर जिमी।
2: हे लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे,

जैसे मॉर्निंग शोज द डे, मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स, बाय मिड डे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट. दैट्स व्हेन द Good evening, hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Soni. A quick check of the headlines first.

0: meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PP ab sambhal lega. Aap apna dekh lo.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा।
6: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search.
7: से अगर गुस्सा क्यों है आप, उनको इम्पोस्टर फ्रॉड क्यों बुला रहे
8: हैं? नहीं, पहले तो आपका शुक्रिया आपने, क्योंकि जो जो इससे अफेक्टेड हैं, उनका जो व्यू पॉइंट आना जरूरी है। थैंक यू फॉर दैट। मैं दलजीत से ज्यादा या कम, उनसे कम गुस्सा है, पर ज्यादा जो, क्योंकि जो हनी त्रेहन है वो भी पंजाब के हैं जिन्होंने बनाई है और अमृतसर से हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि रिकॉर्ड और फैक्ट्स हमेशा, और आपका नेशनल इंटरनेशनल चैनल है उसके ऊपर फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं वो, और इसको मैं चैलेंज करूंगा, और अगर कहीं भी मेरे फैक्ट गलत होंगे तो मैं अपॉलोजी करूंगा आपके सामने, और मैं माफी मांगूंगा भी मैंने ये फैक्ट्स आपको गलत दिए थे। मैं कहीं भी नेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी सारा डेटा है जहां से ये पैसा मिलता है, और अगर कहीं भी 25,000 जो इन्होंने अनआइडेंटिफाइड बॉडीज की बात की है, अगर वो डाटा सच है तो मैं पहले तो चैलेंज करता हूं भी वो 25,000 जो डाटा फैब्रिकेट किया है उसको, उसकी लिस्ट आपके सामने दिखाएं, देश के सामने रखे, सरकार के सामने रखे, और जो इनकी बातें कर रहे हैं उनके सामने रखे। 25,000 तो छोड़िए, मैं कह रहा हूं 5,000 का डाटा ही, उससे नीचे भी मैं बाद में बताऊंगा, 5,000 का भी कोई डाटा इनके पास है तो ये मीडिया में रखें, अपने कमीशन के आगे रखें और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखें। ये बिल्कुल कोई सुप्रीम कोर्ट में डाटा नहीं है, कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमीशन। सेकंड, दलजीत दोसांझ, और ये जो है इन्होंने गुस्से की बात है, हर पिक्चर बनाता है ठीक है, अरे भाई सेंसर बोर्ड है, आप उसके थ्रू आ रहे हो, आप कोर्ट्स में गए हुए, आप एक ओवर द टॉप जो उसके ऊपर, जिसके ऊपर आपने पिक्चर डाली और वहां से बाहर बैठ के विदेश में, यहां कोई नहीं है ना इंडिया से इनको लेना देना है, अब्रॉड बैठ के ये कह रहे हैं भी इसे जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने भी वो सुना है, देखा है, और ये साथ में कहा पद्मना जी भाई, दो दिन के अंदर अंदर ये पिक्चर जो है इसे कोई ना कोई, मतलब सीधा उनका बात था भी इंडियन स्टेट या एजेंसी से इसे उतार देंगी। वो क्यों ये उन्होंने पहले ही बात की, क्योंकि उनके मन में क्या शक था, क्या चोर था, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये कहने वालों को भी पता है, सेंसर चैनल्स के ऊपर है, सिनेमा के ऊपर है, लेकिन ओटीटी पे ओवर द टॉप जो कोई भी किसी तरीके का वहां पे गवर्नमेंट का, जो बीजेपी को ये कह रहे हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, वहां पे इन्होंने 199 की ये पिक्चर को सेल किया, साथ में जी वालों ने, जो Z5 वाले हैं, पता नहीं उसमें क्या वो अपनी बात रखेंगे, पर उन्होंने साथ में ही 495 के बीच में ये पैकेज रखा भाई, इसमें आपको वर्ल्ड कप का जो है वो पैकेज भी 300 में बहुत सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या ये चीज थी, क्या मजबूरी थी, क्यों उन्होंने डाली, क्यों उन्होंने उतारी, ये बात तो वो बता सकते हैं, लेकिन यहां से एक ऐसी बात उठी भाई, ये बीजेपी ने बंद करवा दी, बीजेपी मतलब सरकार ने बंद करा दी, तो एकदम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ढिल्लों पंजाब के, ही हैज रिटन अ लेटर टू अश्विनी वैष्णव जी, जो हमारे आईबी के मिनिस्टर हैं, इंडियन अपने ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने उसके बाद इसके ऊपर कमेटी बनाई भी ये पता तो लगे भी कैसे पिक्चर डली, कहां से हट गई। इसके ऊपर उन्होंने उल्टा इंक्वायरी की बात

0: की है पर
1: दिलजीत दोसांझ हैज सेड दैट लुक दे साइलेंस अस इन 1995 दे आर ट्राइंग टू साइलेंस अस इन 2026 एंड द ट्रूथ मस्ट गेट आउट दैट यू हैव मिस्टर खालड़ा हु वाज एन एक्टिविस्ट हु वाज killed in this brutal fashion only because he was highlighting these enforced disappearances and the government of India is trying to silence us even today like they did in 1995 so wo haq ki awaaz utha rahe hain
0: agreed bilkul khalra ji ki picture banayi dikhayi ab meri ek request hai unse haneet rehan ji se bhi aur bade bade jo director hain kashmir files bani kerala file bani aur ab iske upar punjab ke liye bhi meri request hai unse मैं ये नहीं कहता कोई मेरा उनसे मेरा हक है जैसे उन्होंने ये बनाई एक फिल्म एज ए इंडियन भारतीय होने के नाते उनकी दूसरी ड्यूटी भी बनती है भी यहां जो इसके कारण एक बैकलैश एक यंगस्टर्स में गुस्सा आ गया वन साइडेड दिखा के एक पिक्चर वैसे होती तो आपने इसको रियलिटी कह के बनाया है भी ये रियलिटी है अब मैं आपके सामने रखूंगा भी इसके ऊपर भी वो जरूर पिक्चर बनाए ये कोई वैसे ही मैंने छापे हुए अखबार नहीं है ए 125 पैसेंजर्स मैसेकर्ड ये जो लालड़ू के पास पंजाब में हुआ 125 लोग इसके ऊपर भी पिक्चर बनाई उसके बाद आपको मैं एक और आपको हैरान करने वाली बात है एक यंग आईपीएस ऑफिसर जिनका अविंदर सिंह ही इज अ गुरसिख गाय ये एक गुरसिख नए आईपीएस ऑफिसर थे जो पटियाला एनआईएस में जो अपनी वहां पे मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे एनआईएस में और ये एसएसपी पटियाला थे इनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर थी इनकी बेटी एक साल की थी 3 साल का इनका बेटा था कभी इनकी फैमिली में पूछा जाके इनका क्या हाल है कैसे इन्होंने जिंदगी बतीत की क्यों क्योंकि ये देश की बात करते थे नेशनलिस्ट थे और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे इनके ऊपर कभी आपको रहम तरस नहीं आया इनकी दाढ़ी भी वैसी है इनकी भी पगड़ी वैसी है ये सिर्फ आईपीएस ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभा रहा था इसलिए आपने पिक्चर की इनकी बनाई इन लोगों की ये सच्चाई है आपने पिक्चर बनाई इन लोगों की खालड़ा साहब मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे उन्होंने अच्छा काम किया पर इनकी आइडेंटिफाई क्यों की बॉडीज के लिए जो AK-47 डालते थे ये इनकी इनकी आइडेंटिफिकेशन ही क्यों की इनकी आइडेंटिफिकेशन क्यों की और आप हैरान हो जाएंगे उसके बाद ये बस मैसेकर टोल 40 ये बटाला में 40 पीपल उनके परिवार में कभी देखा भी उनकी विधवा का क्या हाल है उनकी मां का क्या हाल है उनके बच्चों का क्या हाल है नहीं उसके बाद ये एक अमृतसर के गांव में मैं मतलब कितनी इनकी किसी को याद तरस नहीं आया इनकी कभी इनको याद नहीं आई भी किस तरीके ये लोग मारे गए इनके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनेगी चंडीगढ़ में रामलीला में किस तरीके से आके मार दिया गया किसी को कोई इनका फिक्र नहीं है तो ये लोग और इन्होंने एक और फैक्ट मैं बाकी बात करूंगा ये इन्होंने बोला है भी विटनेस इन खालड़ा मर्डर हु हैड बीन टर्न्ड हॉस्टाइल अलाइव
1: क्योंकि आपने उस पिक्चर की बात की मैं आपको पूछना चाहती हूँ वो कह रहे हैं कि भाई हमने एक सब्जेक्ट बनाया है कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई सोच समझ के कोई वन साइडेड दिखाया है वी शोड एवरीथिंग दैट जसवंत सिंह खालड़ा वॉज डूइंग आपको ये सब अगर मैसेकर्स दिखाने हैं आप पिक्चर बना लीजिए हमारी पिक्चर मत रोकिए
0: नहीं नहीं हमने कहां रोकी पिक्चर तो उन्होंने जो आग लगाने की कोशिश उन्होंने की और बोला क्या
1: आप कह रहे हैं जानबूझकर को रिलीज किया गया आग लगाने के लिए कौन आग लगाना चाहता
0: बिल्कुल बिल्कुल वन साइड देखो फिर दूसरी साइड क्यों नहीं दिखाई एक एक मैं कह रहा हूं बिल्कुल जिन पुलिस वालों ने गलत काम किए आई थिंक मोर देन 127 केसेस हैं जो सीबीआई ने वो भी तो इंडियन एजेंसीज हैं जिन्होंने टेकअप किया और आप हद ये है आप में मेरे ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी उसमें आप दिखा रहे हैं मेरे ग्रैंडफादर 31 अगस्त को उनका असैसिनेशन हो जाता है और उस टाइम तक

0: अलरा साहब जसवंत सिंह खालरा जी को कभी पुलिस ने कोई केस नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कभी उनको उठाया नहीं गया जब पीक ऑफ टेररिज्म था। मेरे ग्रैंडफादर 31st ऑफ अगस्त को वो उनका असैसिनेशन हो जाता है, 6th ऑफ सितंबर को जो कोर्ट किया है उनको पुलिस ने उठाया, और अक्टूबर में जाके वो उसमें पिक्चर में बताया गया है भी उनको मार दिया गया। उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के कौन से मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के कौन से प्राइम मिनिस्टर थे, ये देखना किसका काम है। आप बात एकदम हर चीज उसमें फैक्ट के बाहर, और जो दिलावर सिंह दिखाया ह्यूमन बम उसकी बात की जोड़ी गई है, क्यों ये फैक्ट इतने बड़े गलत दिखाए, वो तो मेरे ग्रैंडफादर से संबंधित है। जो दिलावर सिंह था वो एक अलग एसपीओ था, उसका कोई भाई नहीं मारा गया था, कोई उसका गांव ने जसवंत सिंह खालरा से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तो अलग एक चीज थी, उसको उससे जोड़ दिया गया भी उसने वहां पे ये किलिंग देखी और आके वो ह्यूमन बम बन गया। और जो उन्होंने कहा है इसका ये जिंदा आदमी है, इसका नाम उन्होंने अलग पिक्चर में कुछ रखा है, जो उनको खाना खिलाया था जिसने भी, उसको भी मार दिया गया, पिक्चर में दिखाया गया है केएफ सिंह।
1: क्योंकि आपने अपने दादाजी की बात की है, ऑन अ पर्सनल नोट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत से लोगों ने इस पर एतराज भी किया है दैट देर इज ऑलमोस्ट ग्लोरिफाइंग म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड व्हेन द असैसिनेशन ऑफ सरदार बेअंत सिंह जी इज शोन देयर। हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट ऑन अ पर्सनल नोट, नॉट एज अ पॉलिटिशियन, नॉट एज यू नो समबडी हु इज इन द बीजेपी अ मिनिस्टर, बट एज अ ग्रैंडसन, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सीन?
0: देखो वंदना जी, कई बार बहुत बहुत अफसोस होता है, दुख होता है, हम लोगों ने तो सब कुछ इस देश के लिए खोया और एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसने जम्मू कश्मीर में बहुत हालात ऐसे रहे, गवर्नर रूल रहा, वहां पे फौज लगी, यहां पे सरदार बेअंत सिंह जी लोगों के इलेक्टेड होके लोगों ने चुना, उन्होंने जो यहां पे किसी की बरात नहीं चढ़ती थी पंजाब में, अगर कोई बरात लेके जाता था घोड़े पे उसे उसके साथ उसी गांव के जो पौंड छप्पड़ बोलते हैं उसे उसमें वहां पे उसका मुंह काला किया जाता था। और कोई मेरी बहन, आप इस पे प्रोग्राम जरूर करना, उस टाइम के पुराने रिपोर्टर्स आपके सामने होंगे, जो मेरी बहन मेरी बेटी अगर वो अपनी मर्जी से सूट डाल लेती थी, जीन्स डाल लेती थी, अगर वो दो गुत्ते पीछे नहीं करती थी तो उसके बाल काट दिए जाते थे, स्कर्ट या ये तो बहुत ही दूर, सिर्फ एक ड्रेस थी हर स्कूल में पंजाब और चंडीगढ़ में, वाइट कुर्ता और साथ में ब्लैक कलर की सलवार और केसरी चुन्नी, तालिबान का राज था यहां पे। आज वो चीजें बदल गई। मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन आ गई 95 को, और आप आज अंदाजा लगा लीजिए 36 और प्लस 31 उसके बाद जो जनरेशन पैदा हुई है उसके मन में क्या आएगा। इन्होंने इस आग को जन्म दिया है, और यहां पे कोई ये पिक्चरों की बात करता है, मैं दिलजीत दसांझ से पूछना चाहता हूं और हनीत रेहन से पूछना चाहता हूं भी, कोई उस टाइम पंजाब में थिएटर में कोई पिक्चर लगती थी, कोई सिंगर कोई आर्टिस्ट क्या पंजाब में खुला अखाड़ा, मतलब जैसे गुरदास मान गाते हैं कॉन्सर्ट, मैं शर्त ये कहता हूं भी अगर कोई 80 से 92 पहली बार कोई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे ग्रैंडफादर ने धर्मिंदर अमरीश पुरी जितने लोग से तमस्सम, ये लोग जो पंजाब से जुड़े हुए थे, कोई पंजाब में पिक्चर नहीं, जो सबसे बड़ा हमारा धर्मेंद्र के कजन थे वरिंदर, उनको शूट किया गया, और जिन्होंने प्रणीति जो एक हमारी एक्ट्रेस है जिन्होंने एक चमकीला नाम की पिक्चर बनी जिसमें इन्होंने ही काम किया है, दिलजीत दोसांझ ने चमकीला, वो सबसे जिसने गंदे गाने गाए हैं, मैं कह नहीं सकता लेडीज के हमारी बहनों के लिए, उसको भी उस टाइम उसने गाने गाए, वो माना नहीं क्योंकि बाकी सब रोके हुए थे, चमकीला ने और अमरजीत कौर ने एक दो कैसे निकाली, उनको दिन में दोनों को मारा गया, टेररिस्टों ने मारा, और उनकी बॉडी लेने भी कोई फैमिली वाला नहीं आया, वो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडी सी थी। तो उसके ऊपर दलजीत ने पिक्चर बनाई, पर उसमें दलजीत ने ये नहीं दिखाया, चमकीला और प्रणीति ने ये नहीं दिखाया भी दोनों को किसने मारा। उसके ऊपर भी सच्चाई दिखाते ना भी चमकीला की मैंने उसमें पैसे बना लिए, क्योंकि उसमें 84 में पैसे बना लिए और बातें थी, इनके लिए सिर्फ इनकम है। और यहां मैं कह रहा हूं भी, मैं इसमें चैलेंज करता हूं जो आपके चैनल पे सुनेगा, अगर पंजाब में, और हमारे पे गुस्सा क्यों भाई, गुस्सा करना है तो लोगों कांग्रेस पे करो, जिस कांग्रेस ने, जिस इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी जी ने, जिन्होंने गोल्डन टेंपल पे अटैक किया, हमारे गुरुद्वारे ढाए, 84 में 84 जो हर जगह सिखों को मारा गया, हर देश के कोने कोने में मारा गया, उस चीज को आग लगी हुई थी, जो मेरे ग्रैंडफादर ने तो वो आग आके ठीक करी, उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने आके उसे ठीक किया और अपनी शहादत दे दी। उसके बाद पंजाब आज खुशहाल है, पंजाब आज तरक्की कर रहा है, पर आज फिर मैं इसलिए तड़फ रहा हूं भी, आज फिर 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, 22 पुलिस स्टेशनों के ऊपर ग्रेनेड फेंक दिए गए हैं, ये और ड्रग्स के में।
1: तो आप कह रहे हैं कि ये दोबारा इसको एक तरीके से, फाइनली द वे पीस हैज रिटर्न टू पंजाब, उसको दोबारा एक तरीके से देयर इज एन एफर्ट टू ट्राई एंड पुल इट बैक इनटू द पास्ट, बट हाउ डू यू स्टॉप इट Ravneet Singh Bittu, how do you stop it? Because even despite the fact that this film has been pulled out, it's being screened in Gurdwaras. The SGPC took out a march today. They are holding screenings in villages, in Gurdwaras. There are LED trucks which are, traveling all across the villages of the border of Punjab and Pakistan. Ab to ye ruk nahi sakti na. कहीं इस बैन लगा के गलती तो नहीं कर दी अब आप एसजीपीसी
0: में? मैं यही कह रहा हूं भी, बैन लगा ही नहीं, ये प्रोपेगंडा है। ओटीटी के ऊपर उन्होंने पिक्चर डाली, खुद डाल के खुद उतार ली, इसमें गवर्नमेंट का, बीजेपी का, मैं एक मिनिस्टर होने के नाते कह सकता हूं, बिल्कुल कोई रोल नहीं है।
1: ये तो आईटी मिनिस्टर के कहने पे हटाया गया है, आईटी मिनिस्टर हैज आस्क्ड फॉर इट टू बी पुल्ड आउट।
0: इसके ऊपर इंक्वायरी है जो वो मिनिस्ट्री ने करी है, बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं। बीजेपी तो यहां पंजाब में ना, यहां गवर्नमेंट में थी, ऊपर ना सेंटर में गवर्नमेंट थी, वो तो कांग्रेस है, उसे जवाब देना चाहिए भाई ये हालात क्यों बनाए उस टाइम, क्यों सिखों के साथ ये हुआ। और अकाली दल जो कर रहा है, अकाली दल के लिए जो मेरे रिस्पेक्टेड मिसेज वाइफ ऑफ खालड़ा जी, उन्होंने आके सीधा, आप उसको भी दिखा सकते हैं, बहुत चैनलों पे चला है, उन्होंने सीधा कहा भी 97 में हमें लगा था भी प्रकाश सिंह बादल, क्योंकि वो अकाली दल के एक्टिविस्ट थे, अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी थे खालड़ा साहब, भाई बादल साहब को जब वो 97 में सीएम बने, सारी फैमिली गई, हमने जाके कहा भी अब खालड़ा साहब के केस के बारे में देखिए, उन्हें ढूंढिए, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें पता नहीं था भी उन्हें मार दिया गया है। तो बादल साहब ने, अकाली दल ने जो ये ढोंग रचा है, उन्होंने कहा बीबा जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैनी ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, बट खालड़ा साहब की बात मत कीजिए। ये उनकी वाइफ ने, और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं उनके वाइफ रिस्पेक्टेड खालड़ा साहब के पे, मैं उनको जरूर मिलूं, उनके पास बैठूं, भाई जाने किसकी गई है, परिवार आपका मेरा और बाकी जो सारे हिंदू ऑफिसर पुलिस वाले और पंजाब भी सिख, और आज उसपे ऊपर पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, जब वो जिंदा थे उनको आज तक जो कौमी शहीद जो एसजीपीसी फोटोज लगाती हैं दरबार साहब के साथ म्यूजियम में, कौमी शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। चार बार उन्हें इलेक्शन लड़ाई गई, मिसेस खालड़ा को चार बार पार्लियामेंट और विधानसभा किसी ने मदद नहीं की, उनकी जमानतें जब्त हो गई। तो हम कोशिश करेंगे
1: उनका इस तरीके से पॉलिटिकल, उनको वेपनाइज किया जा रहा है,
0: वेपनाइज किया, और मैं कोशिश करूंगा जब वो बाहर से आए हम दोनों इकट्ठे बैठेंगे, जिन्होंने दुख जे झेला है उस पंजाब की लड़ाई में, हम इकट्ठे बैठ के ये जो पॉलिटिक्स करते हैं उनका मुंह बंद करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी।
1: पर ये बताइए कि जब आपकी, आपका एक स्टेटमेंट है उसको बहुत एडवर्स रिएक्शन आ रहा है, जब आपने कहा था कि भाई अगर आपको जसवंत खालड़ा जी पे बनानी है, पिक्चर बनानी है, अगर आपको ये पिक्चर बनानी है कि कैसे जो इनोसेंट सिख थे उनके ऊपर अत्याचार किया पुलिस ने, तो आप दिलवान बस

0: मैसेकर पे भी बनाइए, आप लालुड़ू बस मैसेकर पे भी बनाइए, आप फतेहाबाद बस किलिंग पे भी बनाइए, तो ये एक तरीके से माहौल खराब कर रहा है, क्योंकि फिर से उस वक्त जो एक खाई थी या जो एक दरार पैदा करने की कोशिश की गई थी सिखों और हिंदुओं के बीच में, उसको एक बार दोबारा, दोज क्रैक्स आर गोइंग टू बी रिवाइव्ड एंड दैट्स वेरी डेंजरस, इट्स प्लेइंग विद फायर।
1: नहीं पद्मिता जी, बिल्कुल नहीं, मैं हिंदुओं की बात अकेले नहीं कर रहा, हिंदू तो बेचारे मैं हम बैठे हैं हमारे जैसे लोग हिंदुओं को बिल्कुल उनकी रक्षा करने के लिए, मेरे दादाजी, हिंदुओं की बात नहीं है अकेली, जो ये मैंने आपको दिखाया, ये कौन, ये एसपी साथ में केपीएस गिल की किलिंग हुई, और ये कौन कह सकता है भी ये अकेले 22 डीएसपी मरे, और मैं अगले दिनों में आपके चैनल पे भी भेजूंगा और मैं हर सिख के घर ही जाऊंगा जो किलिंग हुई है, हिंदू के घर नहीं जाऊंगा, ये चीज नहीं करेंगे, लेकिन जो हर सिख मरा है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा था पिछले लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में ही 136 जो टेररिस्ट ने किलिंग की है अकेले लुधियाना में, वो सिख फैमिलीज हैं, हिंदू और यहां ये लड़ाई नहीं थी, ये तो दिखाई जाती है, ये बस में उतार के जो मारे वो अकेले हिंदू थोड़ी थे, वो सिख हैं, उसमें भी पंजाबी हैं, एससी हैं, ये कोई अगर गलत बात करे, ये जलंधर स्टेशन पे ब्लास्ट हो गया, इसमें किसको पता था कौन सिख है, ब्लास्ट में कोई आइडेंटिफाई कर सकता है भी सिख है जो स्टेशन पे, अभी जहां प्रधानमंत्री जी आएंगे
0: जी।
1: हम उसे जलंधर स्टेशन में उसे बना रहे हैं, स्टेशन पे रेलवे ब्लास्ट हो, इसमें कौन पता, कोई बिहारी था, कोई यूपी वाला था, कोई पंजाब वाला था, किसको पता है,
0: मेरे को ये बताइए कि दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम एंड मेनी पीपल वर्क टू फाइनली गेट पंजाब टू वेयर इट इज टुडे, योर दादाजी वाज वन ऑफ देम,
1: केपीएस गिल वाज सिख, वो कोई हिंदू थे, वो तो सिख थे, केपीएस गिल कोई हिंदू था,
0: करेक्ट, केपीएस गिल के ऊपर भी अब बड़े सवाल पूछे जा रहे हैं, हाउ डू यू एनालाइज हिज लेगेसी, फॉर यू इज केपीएस गिल a butcher in khaki or a hero who got rid of militancy in Punjab? How do you evaluate his
1: legacy? Padma ji, main is baat ka aaj KPS Gill jo the, wo Assam cadre ke officer the, Assam se yahan aaye gaye, laaye gaye, kyunki Punjab mein DGP Rivero rahe, unhone bahut kaam kiya, par KPS Gill chale gaye, पहले कामयाब नहीं हुए, फिर दूसरी बार फिर आए, सेकंड टर्म उनको दी गई, बिल्कुल केपीएस गिल जहां ये वो पहले भी थे, रिवेरो साहब उससे भी मजबूत थे, ये मारने से काम नहीं होता, अकेला भी गोलियां मार दी काम हो गया, नहीं, गवर्नरी रूल था, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने गवर्नरी रूल लगा के, मिलिट्री लगा के, कांग्रेस ने फौज लगा के देख लिया था, मार मार के, मारने से नहीं होता, जब सरदार बेअंत सिंह आए उन्होंने पंचायत इलेक्शन करवाई, उन्होंने काउंसलर की इलेक्शन करवाई, उन्होंने नौजवानों को सिनेमा दिया, गाने वाले दिए, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करवाए, नौकरियां दी, इंडस्ट्री लेके आए, इंडस्ट्री वालों को प्लॉट दिए, अभी और इंडस्ट्री लगाओ, तो ये सारी चीजें हुई, ये पुड्डा जैसे नई नई मिनिस्ट्रीज बनी, ये अकेला मारने से नहीं हुआ, आप सोचो भी मारने से खत्म हो गए, नहीं, आप जरूर पंजाब आइए, यहां देखिए और स्टोरीज कीजिए भी किस तरीके से सरदार बेअंत सिंह और सारी पार्टी, चाहे वो कॉमरेड था कोई, चाहे बीजेपी वाला था, चाहे कोई अकाली दल वाला था, सबने मिलके काम किया, आज पॉलिटिकल और चीज है, आज और रोटियां सेकना चाहते हैं इसलिए ये चीजें हो रही है, नहीं सब पार्टियों ने इकट्ठे होके यहाँ लड़ाई लड़ी है।
0: थैंक यू वेरी मच रवनीत जी, थैंक यू।

0: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check at the headlines first. 15 Indian tourists killed after speedboat capsizes in southern Vietnam. Prime Minister Modi condoles the loss of lives and assures of all possible help. 9-member committee formed to examine the draft Uniform Civil Code in West Bengal. Committee tasked with reviewing the provisions of the bill. Call grows for TVK, DMK and National Alliance after VCK chief's unity pitch. Congress echoes the same sentiment. Prime Minister Modi's big diaspora connect to New Zealand. Prime Minister hailed India-New Zealand ties as well as the community's contribution in global economy. Meta removes AI image feature from Instagram. Move after feature faced backlash for using public Instagram content used for AI creations. Meta admits it missed the mark and disables the feature. US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
1: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हों, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
3: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned a hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar Jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज है इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में। उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है। ट्रायल 2023 से शुरू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफेंस काउंसिल का डेलिब्रेटली डिफेंस साइड से इस मैटर को टैक्टिक्स यूज करके डिले करना।
5: Shocking that Delhi High Court has allowed accused of Shraddha Varekar case, who cut her into pieces and dumped her body here and there, such a horrific case, they have cancelled the proceedings because he has exams to attend. I mean, this can't be worse than that, that where we, the girls and the daughters of this country, they are waiting for the justice and here what happens in proceedings after 4 years, this is the fate. This case might take ages to get concluded. I think this is the fate of every case and that's the reason we raise our voice.
0: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's possible alignment with the INDIA bloc has gathered momentum after fresh calls from key opposition leaders for greater unity in Tamil Nadu. VCK Chief Thoi Thirumavalvan has urged the DMK and TVK to join hands at the national level to take on the BJP, saying national interests must take precedence over state-level political rivalry. Backing the proposal, Congress MP Jyoti Mani said that the two parties should unite to safeguard the nation's future, citing issues such as delimitation, national education policy and the language debate. While there has been no official response from either the DMK or TVK, the remarks have fueled political buzz over whether CM Vijay could back India bloc on the national issues or eventually become part of the opposition alliance.
6: TVK enna solraga enga kolgai irukkunraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandhu edukkunraanga India bloc enna solrudhu avangala edupadhu dhaan arasiyil illai appo yen inga ore anikku varakoodadhu idhu dhaan thirumavalan eduthukkunraanga கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல், பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு, ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து, மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை, ஆனால் இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
7: BCK Chief Mr. Thirumavalavan has mooted the idea of India bloc, including both the DMK and the TVK. The DMK has made it very clear that they will not work with the Congress.
8: See, it's not about Congress or DMK or VCK or any other political party. It's about India and its future and it's about our people. See, we are living in a very troubling times. BJP is completely trying to control each and every machinery, every foundation of democracy. Generally in democracy, voters choose the political party or a government. But in BJP's New India, BJP chooses the voters. That's its SIR. Now delimitation bill is hanging above our head, followed by one nation, one election. So we are really living in a very troubling times. We should work together to save the country. So that's what VCK Chief has expressed in my view.
0: Nine months after the Karur stampede tragedy, the political battle over accountability has flared up yet again. Tamil Nadu Chief Minister Vijay visited Karur and met the families of the victims. The Chief Minister was seen getting emotional as he handed over government job appointment orders to the family. But the emotional outreach quickly turned into a political face-off. While CM Vijay blamed the DMK government and the police for the tragedy, the DMK hit back, accusing Vijay of using the visit for upcoming bipolls. The party had earlier questioned the timing of the job offers for the victim families, claiming it could influence witnesses. Congress has hit back, urging DMK to rise above politics.
9: They have all the rights to cancel the meeting. Engikitta kekkanumla onnu avasiyame kediyadu. Ana adeyala edhuvume seiyama அந்த ஹைவேல இருந்த அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸே எங்களை உள்ள கூட்டிட்டு வந்து விட்டு அந்த நாடகலா இருக்கு பாருங்க. நம்பிட்டேங்க, முழுசா நம்பிட்டேன். அன்னைக்கு இருந்த அந்த கரூர் போலீஸ் பேசும்போது தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னேன் அவங்களுக்கு. எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு நாடகம் நடக்கும். இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? இதெல்லாம் யார் சொல்லி செஞ்சது? இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் அப்படி நடந்தா இப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் இப்படி நடந்தா, இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்து அந்த பிரஷர் போடுறது யார்?
10: எல்லாருமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு, அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் அதை பத்தி அதிகமாக சொல்ல விரும்பல, ஏன்னா விசாரணையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை பத்தி நான் அட்லீஸ்ட் நானாவது ரெஸ்பான்சிபிளாக பேசாம நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த நேரத்துல கூட மக்களோடு நின்றவர்கள் யார், மக்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யார், மக்களை தவிக்க விட்டு விட்டு அங்கிருந்து ஓடி போனவர்கள் யாருன்னு மக்களுக்கு நல்லா தெரியும்.
11: He did not go there to sympathize with the people who had lost their lives, family of the member who have lost their lives. He has gone for electoral campaign. He went to Tiruchi. Everybody thought that since the Tiruchi people had voted for him and elected him, he is going to thank the people. But he did not thank the people. How will a candidate who had won in a constituency thank the people? They will get into a jeep, go through the streets of that constituency and wish to thank the people. But he did not enter into the constituency at all. But he said that I am going to thank the people of Trichy constituency, which had one of the Trichy constituencies which had elected him. He was campaigning for by-election. The same thing he has done in Karur.
12: Minister Vijay went to Karur for by-election campaign, but he declared it as to meet the public. Wherever he is going, he is campaigning for his by-election campaigning only in Karur, where he accused the DMK for the Karur tragedy. 285 days gone. Now only he went to Karur.
13: There is nothing wrong in providing any kind of government jobs to those people who have lost their loved ones, because their whole family has lost somebody. And because of that, the family's whole balance has got lost. For we feel, we see in that angle only.
0: The Congress government in Karnataka is under fire over an acute shortage of teachers in government and government-aided schools. An NDTV reality check has found

0: NDTV Newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
2: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
3: I think it's heartening to see talent that there is in across India Inc.
4: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth but also on bringing good governance.
2: Be part of jury and vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
5: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
6: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
7: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
1: Who will earn India's top?
8: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check at the headlines first. 15 Indian tourists killed after speedboat capsizes in southern Vietnam. Prime Minister Modi condoles the loss of lives and assures of all possible help. 9-member committee formed to examine the draft Uniform Civil Code in West Bengal. Committee tasked with reviewing the provisions of the bill. Call grows for TVK DMK National Alliance after VCK Chief's unity pitch. Congress echoes the same sentiment. Prime Minister Modi's big diaspora connect in New Zealand. Prime Minister hailed India-New Zealand ties as well as the community's contribution in global economy. Meta removes AI image feature from Instagram. Move after feature faced backlash for using public Instagram content used for AI creations. Meta admits it missed the mark and disables the feature. US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
9: पार्टी का हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
10: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हूँ, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
11: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
8: One meeting, one photograph, and Maharashtra

0: vote on the people, the men, the women, the companies in India who have the right stuff is a great opportunity for us.
1: For us, the biggest thing is trust. That's what we provide.
2: We need leaders in India that can help take India being a global superpower.
3: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
4: Who will earn India's top?
5: Hello and welcome. You're watching NETV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check of the headlines first. 15 Indian tourists killed after speedboat capsizes in southern Vietnam. Prime Minister Modi condoles the loss of lives and assures of all possible help. 9-member committee formed to examine the draft Uniform Civil Code in West Bengal. Committee tasked with reviewing the provisions of the bill. Call grows for TVK, DMK and National Alliance after VCK chief's unity pitch. Congress echoes the same sentiment. Prime Minister Modi's big diaspora connect to New Zealand. Prime Minister hailed India-New Zealand ties as well as the community's contribution in global economy. Meta removes AI image feature from Instagram. Move after feature faced backlash for using public Instagram content used for AI creations. Meta admits it missed the mark and disables the feature. US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
6: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का इतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रख ली है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
7: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए उनको बुला रहे हूँ, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
8: देखो सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
5: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm in a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MP

0: MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
1: घटना जो है ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज्ड है इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए. उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई. उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में. उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है. ट्रायल 2023 से शुरू हुआ है. इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ. उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफेंस काउंसिल का डेलिब्रेटली डिफेंस साइड से इस मैटर को टैक्टिक्स यूज करके डिले करना.
2: Shocking that Delhi High Court has allowed accused of Shraddha Walker case, who cut her into pieces and dumped her body here and there. Such a horrific case. They have cancelled the proceedings because he has exams to attend. I mean, this can't be worse than that. That where we, the girls and the daughters of this country, they are waiting for the justice, and here what happens in proceedings after 4 years, this is the fate. This case might take ages to get included. I think this is the fate of every case, and that's the reason we raise our voice.
0: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's possible alignment with the INDIA bloc has gathered momentum after fresh calls from key opposition leaders for greater unity in Tamil Nadu. VCK Chief Thoi Thirumaavalvan has urged the DMK and TVK to join hands at the national level to take on the BJP, saying national interests must take precedence over state-level political rivalry. Backing the proposal, Congress MP Jyoti Mani said that the two parties should unite to safeguard the nation's future, citing issues such as delimitation, national education policy and the language debate. While there has been no official response from either the DMK or TVK, the remarks have fueled political buzz over whether CM Vijay could back India bloc on the national issues or eventually become part of the opposition alliance.
3: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai appo yen inga ore anikku varakoodadhu idhu dhaan thirumaavalvan eduthu vandhukken. கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் RSS காரவனே பேசுறார், ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை, ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா? இது திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
4: VCK Chief Mr. Thirumaavalvan has mooted the idea of India bloc including both the DMK and the TVK. The DMK has made it very clear that they will not work with the Congress.
5: See, it's not about Congress or DMK or VCK or any other political party. It's about India and its future, and it's about our people. See, we are living in a very troubling times. BJP is completely trying to control each and every machinery, every foundation of democracy. Generally in democracy, voters choose the political party or a government. But in BJP's New India, BJP chooses the voters. That's its SIR. Now delimitation bill is

0: most respected names, chose India Inc.'s best and brightest.
1: I'm delighted to be chairing a meeting of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
2: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
3: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
4: It's also important that how they are reshaping the industry.
5: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7. I'm Anusha Sonia. Quick check at the headlines first. 15 Indian tourists killed after speedboat capsizes in southern Vietnam. Prime Minister Modi condoles the loss of lives and assures of all possible help. 9-member committee formed to examine the draft Uniform Civil Code in West Bengal. Committee tasked with reviewing the provisions of the bill. Call grows for TVK, DMK and National Alliance after VCK chief's unity pitch. Congress echoes the same sentiment. Prime Minister Modi's big diaspora connect in New Zealand. Prime Minister hailed India-New Zealand ties as well as the community's contribution in global economy. Meta removes AI image feature from Instagram. Move after feature faced backlash for using public Instagram content used for AI creations. Meta admits it missed the mark and disables the feature. US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
6: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमान तक पहुंचा दूंगा।
7: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हूँ, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
8: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वह सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
5: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting.

0: Call grows for TVK DMK National Alliance after VCK Chiefs unity pitch. Congress echoes the same sentiment. Prime Minister Modi's big diaspora connect to New Zealand. Prime Minister hailed India-New Zealand ties as well as the community's contribution in global economy. Meta removes AI image feature from Instagram, move after feature faced backlash for using public Instagram content used for AI creations. Meta admits it missed the mark and disables the feature. US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
1: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हों, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
3: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है, ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज्ड है, इस केस में 2000

0: while lodged in Tihar Jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
1: घटना जो है ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज है इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए. उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई. उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में. उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है. ट्रायल 2023 से शुरू हुआ है. इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ. उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफेंस काउंसिल का डेलिब्रेटली डिफेंस साइड से इस मैटर को टैक्टिक्स यूज करके डिले करना.
2: Shocking that Delhi High Court has allowed accused of Shraddha Varekar case, who cut her into pieces and dumped her body here and there. Such a horrific case. They have cancelled the proceedings because he has exams to attend. I mean, this can't be worse than that. That where we, the girls and the daughters of this country, they are waiting for the justice. And here what happens in proceedings after 4 years, this is the fate. This case might take ages to get concluded. I think this is the fate of every case and that's the reason we raise our voice.
0: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's possible alignment with the INDIA bloc has gathered momentum after fresh calls from key opposition leaders for greater unity in Tamil Nadu. VCK Chief Thoi Thirumavalvan has urged the DMK and TVK to join hands at the national level to take on the BJP, saying national interests must take precedence over state-level political rivalry. Backing the proposal, Congress MP Jyoti Mani said that the two parties should unite to safeguard the nation's future, citing issues such as delimitation, national education policy and the language debate. While there has been no official response from either the DMK or TVK, the remarks have fueled political buzz over whether CM Vijay could back India bloc on the national issues or eventually become part of the opposition alliance.
3: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivada naala naan eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai appo yen inga ore anikku varakoodadhu idhu dhaan thirumaavanga eduthukken என்ன தப்பு இருக்குது. கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் RSS காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
4: BCK Chief Mr. Thirumavalavan has mooted the idea of India bloc including both the DMK and the TVK. The DMK has made it very clear that they will not work with the Congress.
5: See, it's not about Congress or DMK or VCK or any other political party. It's about India and its future and it's about our people. See, we are living in a very troubling times. BJP is completely trying to control each and every machinery, every foundation of democracy. Generally in democracy, voters choose the political party or a government. But in BJP's new India, BJP chooses the voters. That's its SIR. Now delimitation bill is hanging above our head, followed by one nation, one election. So we are really living in a very troubling times. We should work together to save the country. So that's what VCK Chief has expressed in my view.
0: Nine months after the Karur Stampede tragedy, the political battle over accountability has flared up yet again. Tamil Nadu Chief

0: Meta admits it missed the mark and disables the feature. U.S.-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in U.S. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
1: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का इतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हों, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
3: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है, ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज है, इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था, और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया, और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में, उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है। ट्रायल 2023 से शुरू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ।

0: US-Iran war continues to escalate. Trump's will destroy you threat to Iran, says 1,000 missiles locked and loaded, aimed at Iran if Iran tries to assassinate me. Iran has hit back, saying that they have no faith in US. Iran warns any MOU violation will have consequences. And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met today. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
1: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का इतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हो, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
3: देखो सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज है इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में। उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है। ट्रायल 2023 से शुरू हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल

0: removal of the current Punjab LOP, Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present, and leader of the opposition, Bajwa, joined alongside MP Randhawa. The in-charge Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to the party high command. Meanwhile, he also told media after the meet that there is no one upset and there is no infighting within the Congress.
1: पार्टी का हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हो, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
3: देखो सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वह सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock. Amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar, Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है, ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज्ड है, इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था, और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया, और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में। उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है, ट्रायल 2023 से शुरू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफेंस काउंसिल का डेलिब्रेटली डिफेंस साइड से इस मैटर को टैक्टिक्स यूज करके डिले करना।
5: Shocking that Delhi High Court has allowed accused of Shraddha Walker case, who cut her into pieces and dumped her body here and there. Such a horrific case. They have cancelled the proceedings because he has exams to attend. I mean, this can't be worse than that. That where we, the girls and the daughters of this country, they are waiting for the justice. And here, what happens in proceedings after 4 years, this is the fate. This case might take ages to get concluded. I think this is the fate of every case. And that's the reason we raise our voice.
0: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's possible alignment with the INDIA bloc has gathered momentum after fresh calls from key opposition leaders for greater unity in Tamil Nadu. VCK Chief Thoi Thirumaavalvan has urged the DMK and TVK to join hands at the national level to take on the BJP, saying national interests must take precedence over state-level political rivalry. Backing the proposal, Congress MP Jyothimani said that the two parties should unite to safeguard the nation's future, citing issues such as delimitation, national education policy and the language debate. While there has been no official response from either the DMK or TVK, the remarks have fueled political buzz over whether CM Vijay could back India bloc on the national issues or eventually become part of the opposition alliance.
6: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai appo yen inga ore anikku varakoodadhu idhu dhaan thirumaavalan eduthu vandhukken கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்க இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
7: VCK Chief Mr. Thirumaavalvan has mooted the idea of India bloc, including both the DMK and the TVK. The DMK has made it very clear that they will not work with the Congress.
8: See, it's not about Congress or DMK or VCK or any other political party. It's about India and its future, and it's about our people. See, we are living in a very troubling times. BJP is completely trying to control each and every machinery, every foundation of democracy. Generally in democracy, voters choose the political party or a government. But in BJP's new India, BJP chooses the voters. That's its SIR. Now delimitation bill is hanging above our head, followed by one nation, one election. So we are really living in a very troubling times. We should work together to save the country. So that's what VCK Chief has expressed in my view.
0: Nine months after the Karur Stampede tragedy, the political battle over accountability has flared up yet again. Tamil Nadu Chief Minister Vijay visited Karur and met the families of the victims. The Chief Minister was seen getting emotional as he handed over government job appointment orders to the family. But the emotional outreach quickly turned into a political face-off. While CM Vijay blamed the DMK government and the police for the tragedy, the DMK hit back, accusing Vijay of using the visit for upcoming bipoles. The party had earlier questioned the timing of the job offers for the victim families, claiming it could influence witnesses. Congress has hit back, urging DMK to rise above politics.
9: They have all the rights to cancel the meeting. Enga kitta kekkanumla onnu avasiyame kedaiyadhu. Ana adeyala edhuvume seiyama அந்த ஹைவேல இருந்து அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸே எங்களை உள்ள கூட்டிட்டு வந்து விட்டு அந்த நாடகலாம் இருக்கு பாருங்க. நம்பிட்டேங்க, முழுசா நம்பிட்டேன். அன்னைக்கு இருந்த அந்த கரூர் போலீஸ் பேசும்போது தேங்க்ஸ்லாம் சொன்னேன் அவங்களுக்கு. எனக்கு தெரியாது இப்படி ஒரு நாடகம் நடக்கும். இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம்? இதெல்லாம் யார் சொல்லி செஞ்சது? இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் அப்படி நடந்தா இப்படி பண்ணுங்க, சப்போஸ் இப்படி நடந்தா, இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அந்த பிரஷர் போடுறது யாரு?
10: எல்லாருமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் அதை பத்தி அதிகமாக சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா விசாரணையில இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதை பத்தி நான் அட்லீஸ்ட் நானாவது ரெஸ்பான்சிபிளா பேசாம நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த நேரத்துல கூட மக்களோடு நின்றவர்கள் யார், மக்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் யார், மக்களை தவிக்க விட்டு விட்டு அங்கிருந்து ஓடி போனவர்கள் யாருன்னு மக்களுக்கு நல்லா தெரியும்.
11: He did not go there to sympathize with the people who had lost their lives, family of the member who have lost their lives. He has gone for electoral campaign. He went to Tiruchi. Everybody thought that since the Tiruchi people had voted for him and elected him, he is going to thank the people. But he did not thank the people. How will a candidate who had won in a constituency thank the people? They will get into a jeep, go through the streets of that constituency and wish thank the people. But he did not enter into the constituency at all. But he said that I am going to thank the people of Trichy constituency, which had one of the Trichy constituencies which had elected him. He was campaigning for by-election. The same thing he has done in Karur.
12: Minister Vijay went to Karur for by-election campaign, but he declared it as to meet the public. Wherever he is going, he is campaigning for his by-election campaigning only in Karur. There he accused the DMK for the Karur tragedy. 285 days gone. Now only he went to Karur.
13: There is nothing wrong in providing any kind of government jobs to those people who have lost their loved ones, because their whole family has lost somebody, and because of that the family's whole balance has got lost. For we feel we see in that angle only.
0: The Congress government in Karnataka is under fire over an acute shortage of teachers in government and government-aided schools. An NDTV reality check has found classrooms being merged, one teacher handling multiple subjects, and students worrying that they will not finish their syllabus before exams. The government says teachers are being deployed for official duties, but the opposition alleges education is taking a backseat in the state.

0: और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये न सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बरदस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
1: गुरजीत राणा जी ने मुझे निमंत्रण दिया, मैं वहां गया। तो जो नेता जिससे जुड़े हुए हैं तो एक दूसरे के घर जाए, उनको बुला रहे हों, तो वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, बातचीत हुई, चाय पिए, भोजन किए सब लोग। ये हमारा पार्टी है, वो आंतरिक लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जहाँ तक के जो कमेटी बनी है और हाईकमान ने फैसला किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं। कोई भी नेता यदि अनुशासन की सीमा लांघेगा, चाहे वो कितना बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई नेता यदि कंप्रोमाइज हो जाएगा बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से और किसी दल से, वो कैसे चलेगा, है ना, ये होने नहीं देंगे।
2: देखो सारे ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारे की गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
3: One meeting, one photograph, and Maharashtra politics is still feeling the aftershock amid buzz over his photograph with NCP SP Chief Sharad Pawar. Deputy Chief Minister Shinde has defended the meeting, saying political opponents are not enemies. This comes after Sena UBT questioned the optics of Pawar meeting Deputy CM, whom it labelled as a traitor. NCP SP Supriya Sule has sought to downplay the buzz, calling it storm on a teacup, even as Congress leader Prithviraj Chavan has alleged attempts to split the NCP SP and poach Congress MP. Adding to the buzz, NCP SP MLA Rohit Pawar has spoken of pressure on his party's MPs and MLAs. The question is this just a teacup storm, or there is more to this picture that has sent aftershocks in Maharashtra politics? 4 years after the shocking murder, Shraddha Walker murder case gripped the nation, the trial has hit an unusual pause. Delhi Saket Court has adjourned the hearing after murder accused Aftab Poonawalla sought permission to appear for his IGNU master's exam while lodged in Tihar jail. The court allowed the request, meaning the exam comes first, the hearing later. The Aftab, the accused who's charged with murder, causing the disappearance of evidence, allegedly strangling Shraddha, dismembering her body, disposing of the remains, has pled not guilty. Final arguments are yet to begin and the case remains far from a final verdict.
4: घटना जो है ये क्राइम आफ्ताब अमीन पूनावाला जो कि इसमें एक्यूज है, इस केस में 2022 में मंथ मई में इसने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा विकास वालकर का मर्डर करके उसको कई एक पीसेस में काट करके मेहरौली के जंगल में फेंक दिया था, और इसने वो उन चीज़ों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं कर पाए। उनके पेरेंट्स ने जो है इसमें मिसिंग FIR मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि छतरपुर दिल्ली में उसने मर्डर कर दिया, और ये बात अक्टूबर मंथ में जाकर के पता चली 2022 में। उसके बाद से चार्जशीट फाइल हुई, देन ट्रायल पर ये मैटर है, ट्रायल 2023 से शुरू हुआ, इसमें ऑलमोस्ट ट्रायल पर ही ये कोर्ट रूम में ही 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारा ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफेंस काउंसिल का डेलिब्रेटली डिफेंस साइड से इस मैटर को टैक्टिक्स यूज करके डिले करना।
5: Shocking that Delhi High Court has allowed accused of Shraddha Walker case, who cut her into pieces and dumped her body here and there, such a horrific case, they have cancelled the proceedings because he has exams to attend. I mean, this can't be worse than that, that where we, the girls and the daughters of this country, they are waiting for the justice, and here what happens in proceedings after 4 years, this is the fate. This case might take ages to get concluded. I think this is the fate of every case, and that's the reason we raise our voice.
3: Tamil Nadu Chief Minister Vijay's possible alignment with the INDIA bloc has gathered momentum after fresh calls from key opposition leaders for greater unity in Tamil Nadu. VCK Chief Thoi Thirumaavalvan has urged the DMK and TVK to join hands at the national level to take on the BJP, saying national interests must take precedence over state-level political rivalry. Backing the proposal, Congress MP Jyotimani said that the two parties should unite to safeguard the nation's future, citing